कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर मत्थे टिक्का तेर धोती का खाई हर छुरी जगत का साई नीर बस्त्र पैर हुए प्रवान मिले स्थान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मांजू ठिचड़ी प्रेन कहो नानक सच थ्याई है

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहा। हुण तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लै चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र जिथों कुछ ही पलों के इंतजार तो बाद सुनोगे हिंदी दे विच समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: क्लेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित छठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: जय हिंद जी संधु साहब बच्चे आ रहे हो।
1: जय हिंद जी, जय हिंद हरुड़िया राम जी, सुनाओ की हाल चाल है।
0: हाल चाल तगड़ा, शुक्र मालिक दा, तुसी अपना दसो।
1: बहुत बढ़िया। देखो आपां जिदां गल करदे हुंदे कि समय दे हिसाब नाल काम करने, कई बार समय तो पहले भी काम करने पैंदे है,
0: करने पैंदे है जी। देखो जिदां कहिंदे वी जिहदे घर दाणे उहदे कामले वी सियाणे, हिसाब हो जांदा है। हरे चारा एक, क्योंकि जिम्मेदारी दे विच तुसी अहम बड़ी गल कीती है, हरा चारा एक ऐसा है जिहदी असीं वेले सिर ब्योतबंदी नहीं, वेले तो पहला ब्योतबंदी
1: करनी जुड़ी है, बहुत जरूरी है जी। कई बार देखो आपां हुण पशु ज्यादा रख लैने, रकबा थोड़ा,
0: बिलकुल,
1: तो फिर समस्या आ गई।
0: आ गई
1: तो जे उन्हों आप समय सिर ना बीजिया या समय सिर कट के ही ना पाया, पूरे जो तत् बने होंगे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चारे नूं जदों समय सिर कट के पाइए, जो पूरे तरीके तैयार हो,
0: बिल्कुल। नाले एक संधु साहब दूसरी गल ये भी आ जाती है कि जे असी सारा साल सस्ता दुध तो पैदा करना चाहते तो उदे लई सानू सारा साल हरे चारे की ब्योतबंदी करनी पैनी है,
1: बहुत जरूरी है जी। नाले देखो रुड़िया राम जी, हुण तां सानू इहो जिहे तरीके आ गए भी कहिंदे भी रोज हरा चारा कट के पाउणा भी बड़ा औखा लगदा,
0: औखा जी।
1: जे अचार बना लो उहदा,
0: हां अचार,
1: मक्की दा अचार बड़ा वधिया बणदा जी।
0: आ जिहड़े समय दीआं फसलां हुंदीआं ने ना, इन्हां दे विच जिद्दां तूं मक्की दी गल कीती, क्योंकि मक्की जिद्दां आपां कहिंदे कि उस इस मौसम दे विच मक्की ते दूजे मौसम दे विच बरसीम, दोनों प्रमुख चारे है हाड़ी सौनी दे, ते इस करके जदों मक्की दी गल करदे आ क्योंकि मक्की दे विच इह सब तों ज़्यादा समर्था है कि इहदा अचार बना के असीं सारा साल वरतों कर सकते हां।
1: नाले देखो खास करके बारिशां च बड़ा काम आउंदा,
0: काम आउंदा जी, काम,
1: क्योंकि जे बाहर हुण मौसम ठीक नहीं ते कौन जाके उहनूं कट के लियाऊगा तो फिर पाऊगा, उहदी बजाए आपां ने यह तरीका कि जे अचार पहला तैयार किया हो वधिया किस्म का, तो अजकल देखो TMR कहिंदे जे टोटल मिक्स राशन, उहदे हिसाब नाल वधिया बणतर बन जाती हैगी है।
0: इहदा फायदा भी है ना, देखो हुण जे आपां अचार की गल करदे आ, सीधा चारा कट के पाउण नालों जे असीं अचार दिंदे आ पशुआं नूं, उहदे च गुणवत्ता वध जाती है, तत् वध जांदे है। सो पशुआं नूं इह है कि जदों अचार दी असीं गेज पाउणी पैंदी है, जदों गेज पै जांदी है फिर इह ताजे हरे चारे नालों वी ज़्यादा फायदेमंद है।
1: बिल्कुल जी, देखो जे 1006 इक्को किस्म है जी,
0: हाँ
1: हरे चारे वास्ते,
0: और जे ना मिले दूजियां वी लै सकदे,
1: लै सकदे हां,
0: लै सकदे हां, पर प्रमुख जिहड़ी आपां गल कर सकदे हां वी इही किस्म जिहड़ी सिफारिश कीती जांदी।
1: हाँ एक गल होर देखो रुड़िया राम जी, कि मक्की

राम सखा निषादराज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषादराज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषादराज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषादराज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषादराज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। खेड संसार इस प्रोग्राम नू सुन सकोगे रात 9:03 ते। शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुरसाधना सुन सकोगे रात 10:02 ते। आज दे इस प्रोग्राम दे विच कलाकार उस्ताद राशिद खान द्वारा राग मारू बिहाग च शास्त्रीय गायन सुन सकोगे। रात 11:03 ते साडे स्टूडियो तो सुनोगे प्रोग्राम सरगम। इस तो इलावा समाचार ते मुख समाचार अपने अपने निर्धारित समय ते पेश कीते जाणगे। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण तो कुछ पलां बाद लै चलांगे अपने दिल्ली केंद्र जिथों सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: शनम कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयम् उत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्य दलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वा मोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने न्यूज हेडलाइंस। अमरीका दे एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत सफल दसदिया कहा है कि नवी दिल्ली ऐलाननामा वखो वखरे विचार वाले देशों विचकार सहमति बनाने की भारत की योग्यता दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि फौज के अंतक यत्ना सदका जम्मू कश्मीर दे विच सुरक्षा स्थिति पूरी तरह काबू हेठ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नवी दिल्ली दे विच वियतनाम दे विदेश मंत्री नाल 19वीं भारत वियतनाम संयुक्त कमिशन दी मीटिंग दी सह प्रधानगी कीती। सरकार ने नेपाल बिजली अथॉरिटी नूं इस साल 31 दिसंबर तक 18 घंटे रोजाना बिजली बरामद करन दी इजाजत दे दित्ती है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान तो दरामद कीते गए 362 मैट्रिक टन तो वध छुआरे जब्त कीते ने। पंजाब भर विच चलाई गई एक व्यापक इनफोर्समेंट मुहिम तहत आबकारी ते कर विभाग ने GST नियमां दी उलंघना दे शक विच 170 वाहनां नूं जब्त कर लिया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त महीने दे विच 6 वख-वख मामलों दे विच 7 सरकारी मुलाजमां ते एक प्राइवेट व्यक्ति नूं रिश्वत लैंदिया रंगे हत्थी काबू कीता है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक दे 4 साल तो वध समय दौरान 92 दहशतगर्दी मैड्यूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दा नु गिरफ्तार किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुण प्रीत सिंह सौंध ने फिरोजपुर विच फिरोज शाह विखे नवीनीकरण किए एंग्लो सिख युद्ध अजायबघर का उद्घाटन किया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दे विच 27 अक्टूबर तो 5 नवंबर तक होने वाली हाकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का लोगो जारी किया। सो ए सन न्यूज हेडलाइंस। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਠੀਕ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਠੀਕ 8:30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਚ 2026 ਕਾ ਆਜ ਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਮੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਬੀਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ ਨਿਆਇਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਇਆਧੀਸ਼ੋ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਕੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇ ਲਿਏ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਇਆਲੇ ਔਰ ਉੱਚ ਨਿਆਇਆਲਿਓ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤੰਤਰ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਕਾਰਗਰ ਬਤਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਨ ਕੀ ਮੌਤ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਦਰਜ ਕੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਦੂਸਰਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਆਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਮੇ। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप होंगे। बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
4: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22 समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा शामिल हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
4: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने

0: दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने

0: celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने कहा कि 2000 रुपए तक के UPI भुगतान ते बैंक कोई चार्ज नहीं ला सकते। प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनमी फोरम 2026 सम्मेलन अज तो गांधीनगर च शुरू हो रहा है। भारत ते कनेडा विचकार तजवीज़शुदा व्यापक व्यापार समझौते ते गलबात दा अगला गेड़ नवी दिल्ली च शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजां विरुद्ध शिकायतों के निपटारे लिए सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्टां वालों विकसित प्रणाली नूं मजबूत ते कारगर दस्सिया है। ते भारत ते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने कहा कि बैंक यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI या रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड राही किए गए 2000 रुपए तक के लैन देन या भुगतान ते चार्ज नहीं लगा सकते। एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली मुहैया करने वाला इन्हां तरीकों राही लैन देन करने वाले व्यक्तियों ते सीधे या सीधे चार्ज नहीं ला सकता। वित्त मंत्रालय ने UPI लैन देन ते चार्जां संबंधी नियमों नूं स्पष्ट करने लई भुगतान ते सैटलमेंट सिस्टम एक्ट तहत इन्हां बदलावों नूं नोटिफाई कीता है। खास तौर ते UPI ते रूपे समर्थ डेबिट कार्डां राहीं कीते गए 2000 रुपए तक दे लैन देन जां इलैक्ट्रॉनिक भुगतान विधियां वजों श्रेणीबद्ध कीता गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट कीता सी कि खपतकारां तों UPI भुगतानां लई चार्ज नहीं लए जाणगे। भविख विच लागू होण वाली कोई भी व्यापारी छोटदार MDR निर्धारित सीमा तो वध दे चोणवें लैण देण तक ही सीमित रहेगी। ये चार्ज डेबिट या क्रैडिट कार्ड लैण देण ते लागू MDR नालों काफ़ी घट होएंगे। प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनमी फोरम 2026 अज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर च शुरू होएगी। दक्षणी एशिया विच पहली बार आयोजित हो रही यह कानफ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय वातावरण जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे मंत्री भुपिंदर यादव ते गुजरात के मुख्यमंत्री भुपिंदर पटेल सांझे तौर ते करनगे। इस समागम विच 65 तो वध देशां दे 2000 तो वध हिस्सेदार शामिल होणगे। इस समागम सर्कुलर इकोनमी लोकां ते खुशहाली लई तब्दीली विषय ते आयोजित किया जा रहा है। दो दिन समारोह दौरान 4 मुख सैशन ते 16 विषय आधारित सैशन होणगे, जिन्हां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की वरतों, साफ सुथरी ऊर्जा, टिकाऊ वित्त शासन ते स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्गे अहम खेत्र शामिल होणगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन अते हिंद प्रशांत पहुंच विच एक अहम भाईवाल है। नवी दिल्ली विखे व्यापार, आर्थिक, विज्ञानिक अते तकनीकी सहयोग बारे भारत वियतनाम संयुक्त कमिशन की 19वीं मीटिंग की सह प्रधानगी करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि वियतनाम आसियान नाल व्यापक रणनीतिक भाईवाली के ढांचे तहत एक महत्वपूर्ण भाईवाल है। उन्होंने कहा कि मीटिंग समझौतों के अमल की समीक्षा करन अते दोहां देशों विचकार उच्च पद्धरी राजनीतिक गतिशीलता नूं ठोस नतीजों विच बदलन का मौका है। विदेश मंत्री ने अगे कहा कि 3 साल पहला हुई संयुक्त कमिशन की पिछली मीटिंग तो बाद दवले संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई है। भारत अते कैनेडा ने तजवीज़शुदा व्यापक आर्थिक भाईवाले समझौते लिए गलबात का चौथा गेड़ नवी दिल्ली में शुरू कर दिता है। दोहां देशों का टीचा 2030 तक दवले व्यापार को वधा के 50 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। 5 दिन तक चलने वाली यह गलबात कल शुरू हुई है, 18 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान वस्तां ते सेवावां दे व्यापार विच तकनीकी रुकावटां वर्गे अहम मुद्दयां ते चर्चा कीती जाएगी। दोहां देशां विचकार दवला व्यापार 2024-25 विच 8.66 अरब डॉलर तो घट के 2025-26 विच 7.95 अरब डॉलर रह गया, जो कि 8.22% की गिरावट नूं दर्शाउंदा है। भारत तो कनेडा नूं कीतियां जाण वालियां प्रमुख बरामदां विच दवाइयां, लोहा ते स्टील, समुंदरी भोजन, सूती कपड़े, इलैक्ट्रॉनिक्स ते रसायण शामिल ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने मरहूम अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की सबका मैनेजर दिशा सालियन की मौत के संबंध में एक FIR दर्ज की है। दिशा सालियन की मौत

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: दर्शकों खबरदार, ये ब्रेकिंग न्यूज बाण तो बचना है, तो पैसे भेजते समय नाम अते रकम हमेशा दोबारा चेक करो।
4: RBI कहंदा है किसे नु भी पेमेंट करदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
5: ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੀਤੂ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸਵਿਤਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

तजवीज़ शुदा व्यापक व्यापार समझौते ते गलबात दा अगला गेड़ नवी दिल्ली विच शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजां विरुद्ध शिकायत दे निपटारे दे वास्ते सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्टां दे वल्लों विकसित प्रणाली नूं मजबूत ते कारगर दस्सिया। कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध ते डॉक्टर बलजीत कौर ने मलोट विखे श्री गुरु रविदास नगर दे विच 15 करोड़ रुपये की लागत दे नाल तैयार होने वाले मलोट क्राफ्ट कोरीडोर प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखिया। पंजाब पुलिस दे काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक दे 4 साल तो वध समय दौरान 92 दहशतगर्दी मैडूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दा नूं गिरफ्तार किया। पंजाब भर के चलाई गई एक व्यापक इनफोर्समेंट मुहिम के तहत आबकारी कर विभाग ने GST नियमों की उलंघना के शक के 170 वाहनों नूं कब्जे दे विच लिया। सरकार ने सोशल मीडिया से वायरल हो रही उस वीडियो का खंडन किया जिस दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए तो घट कमाई करने वाले व्यक्ति को मुफ्त कार देगी। भारत और अफगानिस्तान विचकार दूसरा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली दे विच खेडिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली दे विच तेज मीह की पेशीनगोई की है। सो ये सन न्यूज हेडलाइनस। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 9:02 हो चुके ने। एक ही फिल्म के गीत आओ सुनते हैं। फिल्म म्यूजिक ते बेस्ड इस प्रोग्राम नू ते आज दे इस प्रोग्राम दे विच सुनांगे फिल्म गुलाम चो लए हुए कुछ नगमे। सो तुसी आज दे इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल हो यानी कि तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट नीतू। सो आज दा साडा फिल्मी सफर लैके आया है तुहानू साल 1998 वल जदों सिनेमा दे पर्दे ते एक अजिही कहानी आई जिस दे विच सी बागी पुणा दोस्ती प्यार गलत संगत ते अपने जमीर दी आवाज़ नू पछाणन दी जंग। फिल्म सी गुलाम। विक्रम भट्ट ने निर्देशन हेठ बनी इस फिल्म दे विच आमिर खान ने सिद्धार्थ मराठे यानी कि सिद्धू का किरदार निभाया सी जबकि राणी मुखर्जी उन्होंने नाल नज़र आई सी। फिल्म की कहानी एक अजिहे नौजवान के आले दुआले घूमती है जो गलत लोगों के प्रभाव हेठ जिंदगी जी रहा पर गलत हालात उस नू अपने अंदरले सच दे नाल सामना करन दे वास्ते मजबूर करदे ने। बस इसे फिल्म दी सब तो वड्डी खूबसूरती यही सी। सो इस दा संगीत जिसने 90 दे दहाके दी यादा दे विच अपनी खास थां बनाई। सो आओ शुरुआत करदे आ गुलाम फिल्म दे पहले गीत दे नाल अलका याग्निक कुमार सानू ते दोस्तां दीआं आवाज़ां दे विच गाया होया एह गीत।

साथ तेरे जो मिल जाए, इस गीत नूं इंजॉय करदे आ साडे इस प्रोग्राम दे राहीं। इंजॉय करो तुसीं साडे अज दे इस फिल्म गुलाम दे लए हुए कुछ गीत।

0: प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सम्मेलन आज तो गांधीनगर च शुरू हो रहा है। भारत ते कैनेडा दे विचकार तजवीज़शुदा व्यापक व्यापार समझौते ते गलबात दा अगला गेड़ नवी दिल्ली विच शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजां विरुद्ध शिकायत निपटारे दे वास्ते सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट दे वल्लों विकसित प्रणाली नूं मजबूत ते कारगर दस्सिया। कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध अते डॉक्टर बलजीत कौर ने मलोट विखे श्री गुरु रविदास नगर च 15 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार होने वाले मलोट क्राफ्ट कोरीडोर प्रोजेक्ट का नींह पद्धर रखिया। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक के 4 साल के वध समय दौरान 92 दहशतगर्दी मड्यूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। पंजाब भर के चलाई गई एक व्यापक इनफोर्समेंट मुहिम के तहत आबकारी और कर विभाग ने GST नियमों की उलंघना के शक में 170 वाहनों को कब्जे के लिया। सरकार ने सोशल मीडिया दे वायरल हो रही उस वीडियो दा खंडन किया है जिस दे विच दावा किया गया कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए तो घट कमाई करने वाले व्यक्तियों नू मुफ्त विच कार देवेगी। भारत ते अफगानिस्तान विचकार दूसरा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली विच खेडिया जाएगा। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली दे विच तेज मीह पैण दी पेशीनगोई की है। सो ये सन न्यूज हेडलाइंस।
1: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दिया रमजा बयान करदा, खिडारियों दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तो सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
0: प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ तुहाडे वास्ते कुछ खास और खास प्रोग्राम दे विच तुहाडे वास्ते खास गल्लां बातां तां हुंदियां ही ने पर उहदे नाल नाल बहुत कुछ हुंदा है, बड़ा सारा गीत संगीत हुंदा है और सब तो वड्डी गल ए है कि असी तुहाडे वास्ते लैके आने हां एक खास पेशकारी। खास पेशकारी कहिंदे ने कि गीत संगीत रूह दी खुराक है, गीत संगीत आत्मा दी खुराक है और सब तो वड्डी गल ए है कि गीत संगीत दे विच बड़ा कुछ लुकिया हुंदा है और जिथे असी गीत संगीत दी गल करदे आ उत्थे ही इस गीत संगीत ने सानू बड़ा कुछ दिता है। सो इस गीत संगीत दे विच जदों असी कई तरह दियां वनगियां दी गल करदे आ उहदे विच जिथे बहुत सारे सूफी गीत आउंदे ने उत्थे बहुत सारे साडे कोल फिल्मी गीत आउंदे ने उत्थे ही साडे कोल बहुत सारे इहो जिहा गीत संगीत भी आंदा है जिसनों असी वख वख तरीकियां दे नाल वेखदे आ, वख वख तरीकियां दे नाल सुनदे आ और उना ही गीत संगीत दे विचों एक संगीत है जिन्हां नूं असी गजल कहने आ। सो गजल साडे वास्ते बहुत ही एक खास जज्बा रखती है तो उन्हां ही गजलां नूं असी लैके आने आ तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम दे राहीं। सो शुरुआत करदे आ साडे इस प्रोग्राम दी जगजीत सिंह दे द्वारा गाई हुई इस गजल दे नाल।

ये गजल जनाब वसीम बरेलवी साहब की है और अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो असल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी गुस्ताखी की है जिसकी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और जनाब वसीम बरेलवी साहब से भी। वो शेर असल में कुछ ऐसे है, किताब माजी के और आँख उलट के देख ज़रा, किताब माजी के और आँख उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा सफ़ा मुड़ा हुआ निकले। लीजिए अगला शेर पेश कर रहा हूं।

हेलो हेलो लो जी मैं लगता कि आवाज़ जी है ना उन्हों की साढ़े तक नहीं पहुँच पा रही। खैर जिनी देर तक साढ़े अगले दोस्त आते हैं उन्नी देर तक आप इंजॉय करते हैं जी। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ के गाया हुआ, इंजॉय करो जी इस गीत नूं।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन फोन नंबर है 0181-298-3036 ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in
1: ते लो जी दोस्तों एक होर दोस्त पहुंच चुके ने जी साडे कोल स्वागत है जी बहुत बहुत नमस्कार जी नमस्कार जी कौन बोल रहे हो जी चंदा का ढूंढ ने चांद तारे निकल पड़े गीत सुनदे आ जी बहुत ही खूबसूरत मुहम्मद रफी आशा भोंसले ते हेमलता दी आवाज़ा दे विच गाया हुआ फिल्म का नाम है जी जीने की राह एंजॉय करो जी इस गीत नूं

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ। साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: ते लो जी एक होर दोस्त पहुंचने जी। हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार जी। मैडम जी।
1: हां जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी?
2: पिंड कुड़ियाणा तो कुलदीप ढंगरा बोल रहा मैम जी।
1: कुड़ियाणा पिंड किथे पैंदा जी?
2: हां जी है जी, फाजिलका जिले जा जी।
1: फाजिलका जिले जा, वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी दूरों बोल रहे हो फिर तो तुसी।
2: मैडम जी महीना हो गया फोन, महीने बाद लग्या जी अज।
1: चलो चंगी गल है ना, जदों पुराने देर बाद आ ना उन्हां दी इज्जत मान भी पूरा हुंदा है ना।
2: नाराज
1: नहीं होना, गीत सुनाना तो एंजॉय

0: जी बहुत बहुत। हाँ जी
1: हाँ
0: जी बोल रहे जी चलो जी वधिया ही चाहीदियां ने। आपां हुण तुहानूं सुना रहे हां तुहाडी पसंद दा गीत, ते इंजॉय करो जी इस गीत नूं। ते उम्मीद है कि तुहानूं साडा अज दा इह प्रोग्राम चंगा लग्या होवेगा, ते इंजॉय करदे हां असी इस गीत नूं उदित नारायण ते अलका याग्निक दियां आवाज़ां 'च।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਠੀਕ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2,000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय

0: व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने, नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी अपने पूरे समय ते 11:05 ते लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। होर सुनाओ की ने हाल चाल। फिर प्रोग्राम दा करांगी आगाज, व्हाट्सएप नंबर साडा नोट कर लो 9465536077 9465536077। इस नंबर ते तुसी साडे तक अपनी पंजाबी गीतां दी फरमाइशां भेज सकदे हो अपने नाम पते दे नाल। लो फिर बिना किसी देरी तो तुहाडा मनोरंजन करन लई असीं बिल्कुल तैयार हां। प्रोग्राम दा पहला गीत तुहाडे नजर करांगी जस मानक दी आवाज़।

प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है। तुहाड़ी फरमाइशां दा सिलसिला करन जा रही हां जी शुरू। सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल सुनेहा पहुंच गया है पिंड अलूना म्याना तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो भी ताड़ियां मार दिए पहला लो फिर। और यह भेजण वाले साडे स्रोते ने जी दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा मेहताब वीर सिंह रायपुर और इन्हां दे सारे परिवार दे मैंबर साडे तक पहुँच गए ने जी अपने सुनेहे दे नाल। मेन बाजार हठूर तहसील जगराउं जिला लुधियाना तो भी साढ़े कोल पूरे समय नाल पहुंचे ने इकबाल सिंह हठूर रजिंदर कौर इंजीनियर अमनदीप सिंह सिमरजीत कौर हठूर। और अगला सुनेहा प्रोग्राम दे विच साढ़े तक पहुंचाया पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्या एंजल नेहा अंजलि शुभम

प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी च अगला सुनेहा पढ़न जा रही हां। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, इंजीनियर अमनजोत सिंह, इंजीनियर रमनजोत सिंह सप्पल। पिंड कबूलशाह कुब्बन जिला फाजिलका तो बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैपी ते सारा परिवार। गांव ढाणी लाल खान नोहर तो जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैपी राय। और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। जसपाल भारती, वीना भारती, सुरिंदर, मनदीप, डिंपल, युवराज, हैपी ते धानेवालिया सारा परिवार। साउथ अवेन्यू अबोहर तो इन्होंने मैसेज भेजा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र तो नारायण इंगले, सोपान, ताइडे, आशीष मुहिरकर। और प्रोग्राम च अगला सुनेहा फुल्लां दे नाल आ गए। कौन आ गए? नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा। यह भी दस दईए ये अपने सुनेहे नाल हाजिर होए ने। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया स्वर्ण सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलवीर सिंह। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। और भांडर कबड़ा तो अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री। अगला सुनेहा प्रोग्राम च हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी ते तमन्ना। स्टेशन रोड जमशेदपुर तो इन्होंने सुनेहा भेजा है। संजय ढिंगिया, नमन ते अपार ढिंगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश तो। और अगला सुनेहा मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद तो श्री सुधाकर, राजे जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत, राजे जाधव और जग्गुताई, राजे जाधव, कुमार, संचित, देशमुख, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। सारा ही राजे जाधव देशमुख परिवार। आकाशवाणी जलंधर च तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम च अपने सुनेहे नाल पहुंच गए ने। मनीला फिलीपीन तो मदन मोहन लहर, सरबजीत, संजू, नीतिका, अजय, एंजल, लाडला पोता, अर्नव लहर। रामपाल शर्मा, वी चीमा, डिस्ट्रिक्ट मोगा तो इन्होंने साढ़े तक अपनी हाजिरी लगवाई है। बुलटाणा वटशिंगी महाराष्ट्र तो अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और शलोक कुमार। बुलटाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र तो सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। प्रोग्राम च अगला सुनेहा तेलंगाना भोंगिर तो मोहम्मद बुराहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन कुड़िया, सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी मन्नी काका, जनक नगर लुधियाना, जनक नगर जलंधर तो इन्होंने अपनी हाजिरी लवाई है। राकेश नरेश, जगदीश, बलदेव, बलदेव प्रेमी ये पहुंचे ने जंडवाला छतर चरत सिंह तो। और हरजिंदर सिंह बरार, वीपीओ जीदा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो। खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली जिला संगरूर तो इन्होंने हाजिरी लवाई है। डिंपल, आदिति, पुनीत, प्रवीन, लालरू मोहाली ए पहुंचे ने जी अपने सुनेहे दे नाल। अर्शदीप, सुरजीत सिंह अमरकोट तो, कुलवंत कुमार, सुनीता, फलक, कशिश, सारे काठपाल परिवार, पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ तो बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। पिंड सावंतखेड़ा

आकाशवाणी जलंधर तो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तमक जलंधर पैंदी और तमक जलंधर पैंदी तुहाडे सुने है हुम हुमा के साडे कोल पहुंचे होए ने धमका पा रहे हो तुसीं ते धमका असीं भी पा रहे हां असीं भी पिछे नहीं हट रहे और प्रोग्राम तमक जलंधर

ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती तो सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय, कुमारी प्रसिद्धि, हिरामण शेंडे, प्रतिभा पद्माकर गोंडाने और प्रोग्राम चगला सुनेहा, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी भामिका ते बाणी थांदी। गगनदीप थांदी सब तो पहले नंबर ते ने जी, ऐ आपां तुहानूं दस दईए क्योंकि उन्होंने सज्जे हथ अपना नाम लिखा है और ये पहुंचे कित्थों ने ये भी सुन लो। पिंड ते डाकखाना टोरोवाल, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब तो। अगला सुनेहा प्रोग्राम च गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। गांव जाखोद राजस्थान तो शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति ते भूमिका अरोड़ा। प्रोग्राम चगला सुनेहा लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानकपुरी, राजा दास मानकपुरी होरां दा। और बिहारी कलोनी शादरा दिल्ली तो वीना मस्कीन, तुलसी आशीष राजा, डब्बू सम्राट। चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया महस गेट नाभा तो तुसी सानू सुनेहा भेज रहे हो। और छत्तीसगढ़ दतरेंगी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। पिंड बिल्ली मार जलाला बात तो सानू मैसेज आया है प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या और अनुष्का खुराना दा। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च पिंड तमोट डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो बुट्टा बिंदर शिंदा धालीवाल वाला और प्रगट सिंह धालीवाल, रवि पारसो पंजाबी। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च कला नोर तो नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन ते मयंक शर्मा दा। पिंड ढिलवा तो सुखदीप सिंह, प्रगट सिंह, पिंड गिदड़बाहा तो बाऊ सिंह, पिंड लालबाई तो नछत्तर सिंह, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत परत, कमल सानी, पिंगावाला चौंक, गौराया, जलंधर तो। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचा पिंड वड़िंगखेड़ा, जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, राजा सिंह वड़िंग ते पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह। शुक्रिया जी, तहे दिल तो शुक्रिया। अगला सुनेहा शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू रजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यस सौम्या और एना दे मम्मी पापा। सारयां दा ही सानू प्यार भरिया सुनेहा मिल गया है। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी। नई बस्ती गांजरुंड वारा तो इन्हों ने सानू सुनेहा भेजा है। तुहाड़े सारयां दी रली मिली पसंद है। तुसी गुरदास मान की आवाज़ च गीत सुनना चाहते हो तो लो फिर असी भी सुन लैने थोड़े नाल।

प्रोग्राम चल रहा जी थमक जलंधर पैंती और वेला बहुत ही घट रह गया। चलो जिन्हें भी नाम बोल सकती हाँ बोलांगी जरूर। रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा इन्हों का सुनेहा साढ़े तक पहुँच चुका है। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा तो राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। कंगनपुर जिला कसूर जाफर मेव अब्दुल गफूर दुकानदार और मोहम्मद सरवर। प्रोग्राम चगला सुनेहा तहसील पलथ जिला कपूरथला चमनलाल गांधी धर्मपाल दानिश विनीता कशिश मिंकल गांधी और अगले सुनेहे दे नाल मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन बाबू मिरफा और बेबी चाहत। इन्होंने मैसेज भेजा दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड तो। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੀਪਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत

0: दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दियो, यात्रा दौरान जे टीसी टिकट मंगे तो वखा दियो, पर कोई भी ओटीपी पिन जा पासवर्ड मंगे तो ओनू तुरंत पजा दियो।
2: आरबीआई कहंदा है ओटीपी जा पिन दे लई कॉल जा मैसेज आवे तो थोड़ा ध्यान नाल।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: सारिया लई समाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। कि तुसी भी 18 to 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
6: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: हुण तुसी सुन रहे से परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। दोपहर दा 1 बज रहा लो हुण हिंदी समाचार सुनो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

ओडिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समय की। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुनोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 रंगली धरती च अज तुसी राजकुमार ते साथियां वल्लों माता दियां भेंटां सरवण करोगे। दूजी सभा विच 4 दियां मुख खबरां तों बाद 2:04 ते पंजाबी फिल्म संगीत दा लुत्फ उठाओगे। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। दिहाती प्रोग्राम दा समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच काम दियां गल्लां, झोना वाढी लई मदीना, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर अजैब सिंह। 7 सुनोगे किसान वाणी, कमाद तो वध पैदावार, इस बारे गलबात होएगी डॉक्टर अमरीक सिंह नाल। इस तो इलावा मौसम दा हाल, गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। ₹7:40 ते अंग्रेजी वार्ता सुनोगे जनरेशन गैप, वार्ताकार होंगे कंचन मेहता। साढ़े दिल्ली केंद्र तो 8:45 ते सुनोगे समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी सुनोगे खेड संसार। दियां मुख खबरां तों बाद 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुनोगे सुर साधना। अज इस विच कलाकार होणगे उस्ताद राशिद खान। इन्हां दा शास्त्रीय गायन सुनोगे राग मारू बिहाग विच। रात 10:30 सरगम प्रोग्राम दा लुत्फ उठाओगे।

डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सुनोगे सौगात। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां। इस सन अज रात तक दे प्रसारित कीते जान वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने, कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

फौजी वीरो मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद लैके हाजिर हाँ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे तुहानू सुनाण जा रही हाँ प्रोग्राम सब तो पहला आशकी फिल्म चो लिया गया गीत आवाज अनुराधा पौडवाल दी गीतकार ने समीर और संगीतकार ने नदीम श्रमण

फौजी वीरानी प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत दिल फिल्म चो लिया तुहानू सुनान जा रहे हैं। आवाजा उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल दियां। इस गीत दे संगीतकार ने आनंद मिलिंद।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तैनूं HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बणो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: अपनी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत प्रोग्राम फौजी वीरा लई। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत बाजीगर फिल्म चो लिया गया, तुहाडी नजर करांगी। आवाजा विनोद राठौड़ ते अलका याग्निक दियां। इस गीत दे गीतकार देव कोहली और संगीतकार ने अनु मलिक।

0: ਉਜਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 67ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। आलमी सर्कुलर मईशत फोरम 2026 का गांधीनगर में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि DRDO और सनत के दरमियान शराकत दारी से भारत दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर एक आलमी मरकज बन सकता है। कौमी राजधानी में DRDO सनत तालमेल मीटिंग विमर्श 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, जंगजू तैयारों से लेकर आबदोजों तक, इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेकर मस्नूई जहानत तक हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO आज दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए आला तरीन तंजीम है। अलबत्ता उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत या DRDO की कोशिशें दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए काफ़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्तरक कोशिश है और शराकतदारी विमर्श 2026 का कलीदी पैगाम है।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, ADITI हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिफा के शोबे में इसलाहात की गई हैं, जो बेमिसाल हैं और बहुत से अक्सर तब्दीली लाने वाले फैसले भी किए गए हैं। जनाब सिंह ने कहा कि खुद इनसारी का यह मतलब नहीं है कि मुल्क में महज कुछ कलपुर्जे, मिजाइल, हथियार या प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए जाएं। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सर्कुलर मईशत के उसूलों को भारत की तरक्की से मुतालिक फ्रेमवर्क में तब्दीली करने के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, इनकी मरम्मत करने और तहफुजाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वो आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मईशत फोरम WCEF 2026 के 10वें एडिशन के इफ्तिताही जलसे से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया, जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतालिका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए यकसर तब्दीली। इस आलमी तकरीब का मुश्तरक इनेकाद माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड, फिनलैंड का इख्तराई फंड सित्रा और गुजरात सरकार कर रहे हैं। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। उनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबियों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की की समत काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला।

0: जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
1: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
2: पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दुरंदेश मनसूबा बंदी और काबिल अमल तरीके कार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया, जो मैसूर के चीफ इंजीनियर्स के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर ओडिशा के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है, बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबा जाति मेल जोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाज़ात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिया को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां योम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में यह ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 15 सितंबर 1959 को क्याम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिये का इफ्तिताह किया। 1975 तक ये ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। यकम अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली अख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से इलाहदा कर दिया गया। दिल्ली में एशियाई खेलों के इनेकाद के साथ 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज यमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताजा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर CR पाटिल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, पानी के वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिक रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। अमरीका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें गैर मुल्की तलबा और साफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीका

0: संक्रमित सुई सरिंज साझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
1: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
5: फौजी वीरो, प्रोग्राम च अगला गीत हम आपके हैं कौन फिल्म दा। आवाजां लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम दिया, गीतकार रविंदर रावल और संगीतकार ने राम लक्ष्मण।
6: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

फौजी वीरो प्रोग्राम दा आखरी गीत तुहाडे नजर कर रही हां होलीडे फिल्म चो लिया गया आवाज अरिजीत सिंह दी इस गीत नु लिखिया इरशाद कामिल ने और संगीतकार ने प्रीतम।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
3: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
4: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज

0: न्यूज़ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@airnews हिंदी और पब्लिक पर @airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
2: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
3: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
4: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। रिशु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ. एम विश्वेश्वर

0: विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
2: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए
0: से भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाओ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है।

0: मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, TRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने राजकुमार ते साथी। आओ सुनदे आं इन्हां दी आवाज च माता दी पेंट। मैं देखी माई जी शेर सवारी तेरी।

भुजों में कंगन साजे, पांव में माँ के पद्म विराजे। आठ भुजों में कंगन साजे,

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: रंगली धरती प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। अज तुसी राजकुमार ते साथियां वालों माता दियां पेंटां सरवण कर रहे हो। आओ हुण सुनदे हां राजकुमार ते साथियां दी आवाज च माई जी वारे जा बलेहार लाल रंग लाटा तों।

रंगली धरती प्रोग्राम च आओ हुण सुनदे हां राजकुमार ते साथियां दी आवाज च मैया जी तेरी जोते महारानी तेरी जोते।

अच्छा सुनिए प्रोग्राम चिट्ठी मिठी है। चलो जी पढ़ते हैं इसे अगली चिट्ठी जो कि सानू पीजीएम लोट कैंप तो सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाडी लखविंदर संधु महावीर संधु गुरुचरण रमेश मिगलानी मुलापुर मंडी तो भेजी सानू चिट्ठी कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मंजू शर्मा आशीष शर्मा मिट्टू जैन दीपक जैन टीटू जैन जे बी राव राजेश जैन अरुणा जैन गौतम जैन ते मगीना जैन। जिला बठिंडा तो आई है सानू चिट्ठी हरजिंदर सिंह छिंदा जसबीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता। बागा पुराना तो आई है सानू चिट्ठी गगनदीप कौर गुरप्रीत कौर परमजीत कौर पाल सिंह ते परमजीत सिंह। अजीत नगर मलौर तो आई है सानू चिट्ठी शिंदर सिंह छिंदा सतनाम कौर दिलप्रीत कौर गगनदीप कौर ते रौनकदीप कौर। इन्हां सारे दे पसंद से सिगला गीत लगाने गए कुलविंदर बिल्ला दी आवाज़ आओ सुनते हैं गीत।

तुसी सुनिए बोल हम चिट्ठियां मिठियां। चलो जी पढ़ते हैं अगली चिट्ठी जो कि सानू आई है हीरापुर अबोहर तो महिंदर बिश्नोई वेद प्रकाश अमित अजय ज्ञान पटेल नगर मलोर तो आई है रमेश कुमार गीता रानी शकुंतला गगनदीप रिया आरजू अंबाला तो आई है सन चिट्ठी रवि कुमार राहुल प्रियंका नूर नमन सिमरत गुरु कीरत गुरु शब्द लुधियाना तो आई है सन चिट्ठी शिफाली राज अवि आदित्य राज मॉडल टाउन करनाल तो आई है सन चिट्ठी सुधीर संदीप सुनीता सुनीता शर्मा नियान जगमोहन इशप्रीत ते सोनिया श्री गंगानगर तो आई है सन चिट्ठी डॉक्टर मनवारी जयपाल विमला जयपाल सोनू ममता मोश दीक्षा सुशांत

विक्रम। अगली चिट्ठी सुन हुई है नमन शहर तो हरगोबिंद नगर तो साहिब सिंह सुरजीत जादविंदर मनजीत सोनू ममता बंटी जोनी शिव प्रकाश दीक्षा ज्ञान भूषण ते सिमरन। इन्ना सारे की पसंद से सिगला गीत लगा लगे हैं। रणजीत बाबा दी वाच आप सुन रहे हैं गीत।

तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, ते एक बारी हंस के वखा, ते एक बारी हंस

उसका तो कोई अंत ही नहीं। चौथे गुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी कन्नड़ा राग विच बयान कर देने के ऐसे मुक्ति दाता सतगुर हस्ती गुरु नू राजयां दे राजे भी नमन कर देने। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु कौ बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है। सरवण करदे हैं डॉक्टर अलंकार सिंह होरां वलों गायन कीता होया।

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहतार है। इस शब्द गायन की तसी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा ने। गुरबाणी विच प्रभु नु मित्र सज्जन सखा कंत प्रीतम भगवान आदिक अनेक नावां नाल संबोधन किया जाता है। उसकी केड़ी केड़ी सिफत करिए, उसकी कथा अकथ है। सूही राग विचले छंत दे प्रथम भाग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु की सिफतों सलाह करते हुए

उसके गुण बयान करते ने कि ओ प्रभु सबना का साजन ते मेरा मित्र सदा मिठा ही बोलता है, डाढ़ा ही मिठा बोलता है। मैं महसूस किया है कि वह तो कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता। दास तो सदैव उस अमृत प्रभु सज्जन की शरण लोचदा होया उसे दी शरण विच है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। इस छंद का गायन किया है भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ समल थकी जी ओ कदे न बोले कौरा। इस शब्द गायन की तसी भाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरप्रीत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया है, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 784 उत्ते राग सूही अंदर छंत रूप में सुभायमान है। इस पावन पवित्र शब्द राही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा के महान गुणा की महिमा का गायन करद्या होया बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। वह कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता अते ना ही साढ़े औगुणा नू चितारदा है। वह पापियां नू पवित्र करन वाला है अते किसे दी कीती नाम सिमरन दी काल कमाई नू रत्ता पर भी व्यर्थ नहीं जान दिंदा। वह प्रभु कण कण विच व्यापक है, नेड़े तो भी नेड़े है अते आत्मक जीवन प्रदान करन वाला है। आओ इस पावन शब्द दी विस्थार सहित विचार करिए। इस पावन शब्द दे उपर पातशाह ने मंगल दर्ज कीता है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भाव के परमात्मा एक है, अदुत्ती है, उत्पत्ति पालना नास उसे एक परमात्मा तो हो रहा है। वह परमात्मा दया का सागर है जिसकी प्राप्ति गुरु की कृपा दे राही हुंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। ऐसे मिठ बोलड़े परमात्मा नाल सांझ भी उस मनुख की पै सकती है जिसकी जुबान विच मिठास होवे। फिक्के बोल बोलण वाले मनुख की परमात्मा नाल कदे भी सांझ नहीं पै सकती। सतगुरु तो सानू रोज़ उपदेश करते हैं, नानक फिक्कै बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदीए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटीए, मोह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए, पाणा लह सजाए। भाव के फिक्के बोल बोलण वाले मनुख का तन अते मन दोवें फिक्के हो जाते हैं। रुखा बोलण वाले मनुख नू दुनिया दे रोक रुखे बचना दे नाल ही याद करते हैं। ऐसा मनुख प्रभु की दरगाह तो भी रद्दिया जाता है अते उसनू फिटकारा पेंदियां हन। ऐसा प्रेम तो हीणा मनुख हर थां ते बेइज्जत हुंदा है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब भी कहिंदे हन कि फिक्के बोल बोलण दे नाल प्रभु की दरगाह विच खुआर होईदा है। इसलिए ऐसे बोल बोलो जिस नाल दरगाह विच इज्जत मिले। पातशाह दे बोल जित बोलिया पत पाईए, सो बोलिया प्रवान, फिक्का बोल वि गुचना सुन मूर्ख मन अजाण। पर दूजे पासे जेड़ा मनुख गुरु की संगत विच आ के बैठता है, नाम जपता है, उसनू मिठ बोलड़ेपन की दात प्राप्त हो जाती है। पातशाह दा बचन है, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। बाबा फरीद भी उपदेश करते हैं कि ऐ मनुख जे तू परमात्मा दे नाल सांझ पाउणी चाहुंदा तां कदे किसे नाल फिक्का बोल ना बोली, किसे दा दिल ना दुखाई, क्योंकि सभना दे अंदर परमात्मा वस रहा है। सारे जीव अमोलक मोती हन, बाबा जी दे बचन हन, एक फिक्का ना गालाए, सभना मैं सच्चा तणी, हयाओ ना कहि ठाहे, माणक सब अमोल वे। गुरु अर्जन देव जी दे इस पावन शब्द दियां आरंभलियां पंक्तियां विच बख्शिश करदे हन कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। मैं चेते कर करके थक गया हाँ कि उसका कदे कौड़ा बोल बोलिया चेते आ जाए, पर वह कदे भी कौड़ा बोल नहीं बोलता। अगलियां पंक्तियों विच गुरु साहिब बख्शिश करते हैं, कौड़ा बोल ना जानै पूरन भगवानै औगण को ना चितारे। परमात्मा साढ़े औगुणा नू चेते नहीं रखता, इसे वास्ते वह गुणा नाल भरपूर प्रभु कदे कौड़े बोल बोलने जानता ही नहीं। मनुख ये अनेक औगुणा नाल भरपूर होने के बावजूद भी परमात्मा उस नाल वैर नहीं करता, बल्कि अपनियां दातां बख्शदा रहिंदा है। पातशाह दा बचन है, औगण को ना चितार दा गल सेती लायक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी बख्शिश करते हैं कि परमात्मा साढ़े

साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयाड़ा मेरा साजनड़ा। इस शब्द का गायन किया सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति

0: राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थी। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक, कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, TRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

बाद 10:02 से पेश करांगे प्रोग्राम सुर साधना च शास्त्रीय गायन उस्ताद राशिद खान वालों गाया गया राग मारू बिहाग। 10:03 से समा रहेगा प्रोग्राम।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसे तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसी तो भी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा ले सकता है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकता है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
3: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 6:20 हो रहे ने ते हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: पटवारी साहब का रही हो
1: आजू प्रिंसिपल साहब आजू बच्चे वाले आजू।
0: जय हिंद कबूल करो पटवारी साहब।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी प्रिंसिपल साहब। होर सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है?
0: बहुत वधिया जी, चढ़दियां गलां मालक दी मेहर।
1: देखो मालक दी मेहर तां बनी रहनी चाहीदी है, है जी। जे मालक दी मेहर होएगी ना फिर इंसान कदे भी ना तां अकदा ना थकदा ना उहनूं कोई दिक्कत आउंदी है। पर हुंदा पता की है प्रिंसिपल साहब, जदों इंसान अपनियां चलाण लग जांदा अपने हिसाब दे नाल तुरन लग जांदा उस वेले फिर दिक्कत ही आंदी है।
0: बिल्कुल जी, अगर तुसी सब कुछ पहला प्लान करके चलो तां औकड़ किते भी नहीं आ सकती जी।
1: देखो ना औकड़ तां तां ही आऊ जे इंसान हमेशा ही इसे तरह कोई गलत हिसाब दा। पर तुसी अज की चक्की फिरदे हो?
0: ये बजट है जी,
1: घर का बजट।
0: घर का बजट
1: ओए होए होए होए
0: बजट सिर्फ देश का नहीं हुंदा।

क्यों तू हाले भी ना आवे ताले चले पर छावे क्यों तू हाले भी ना आवे ताले चले पर छावे क्यों तू हाले भी ना आवे असी हंजुआ दे मोती पलकां ते तोल दे।

पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी देहाती प्रोग्राम मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 7 वज रहे ने ते हुण पेश है साडा स्पोंसर प्रोग्राम किसान वाणी।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: 60 साल की उम्र वालों को 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते हैं 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
0: लैके असी हाजिर हाँ प्रोग्राम किसान वाले। सारे सुनने वाले नूं नमस्कार। जय हिंद किसान वीरों। और उम्मीद करते हैं कि साढ़े जिहड़े किसान वीर ने चढ़दी कला विच होणगे। और अज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर अमरीक सिंह जी जो कि गेन कमिश्नर पंजाब ने। और विशा रहेगा साडा कमाद की जिहड़ी देखभाल है और इहदी महत्ता की है। डॉक्टर अमरीक सिंह जी आप जी का स्वागत करते हैं।
3: सति श्री अकाल जी।
0: जिवें कि विशा ही है कमाद की गल करनी है, गन्ने की गल करनी है, तो पंजाब के लिए कमाद की की महत्ता है, क्यों महत्वपूर्ण है?
3: पंजाब दे विच तकरीबन जिहड़ा इस वेले 1,16,000 हैक्टेयर रकबे दे विच गन्ने की काश्त की जाती है, जिहड़ी कि कणक झोना कपाह तो बाद चौथी जिही फसल है जिहड़ी कि एक वपारक फसल है
0: जी।
3: इहदे नाल तकरीबन 55,000 जिहड़े किसान ने वह जुड़े हुए ने सीधे जां सीधे तौर दे उत्ते। सो एक जे आपां कह लईए कि एक किसान दी एक आमदन का वधिया स्रोत है, क्योंकि साडा जिहड़ा मुख्य जिहड़ा रकबा वा वह दरिया ब्यास ते रावी दे नाल नाल जिहड़ा वा तकरीबन 60% है, जिथे कि होर जिहड़ी फसल जिहड़ी आ वह नहीं हुंदी, ते वह गन्ना ही अजिही फसल आ जिहड़ी कि उत्थे उस इलाके दे विच होर हो सकती है। आम करके उत्थे हड़ आउंदा, पानी आ जांदा, ज़्यादा आ जांदा वा, ते वह ये जे ये फसल है जिन्हों कुछ भी जिहड़ा पानी ना जिहड़ा वा उन्हों कोई जिहड़ी आ वह नुकसान नहीं पहुँचाउंदा। सो इलावा जिहड़ी गन्ने की फसल अजिही पक्की फसल आ जिहदे विच एक वारी जिहड़ी है तुहाडी अग जे लग जाए, चाहे अग लग जाए, चाहे गड़े मरी हो जाए, चाहे मीह आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, इन्हें कुछ ना कुछ फार्मर नूं दे जाणा वा। झोना कणक दे विच जे कोई कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वह कई बार लॉस जिहड़ा 100% हो जाता वा, पर यह अजिही फसल जिहदे विच कोई भी लॉस जिहड़ा वा नहीं हुंदा। फिर साडे कोल 15 खंड मिलां जिहड़ियां ने वह इस वेले वर्किंग कर रही ने। 15 खंड का मतलब कि 6 जिहड़ियां ने प्राइवेट अदारियां कोल आ ते 9 जिहड़ियां ने कोऑपरेटिव अदारियां कोल आ।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 874 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, TRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ 7:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबर। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवी दिल्ली 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग विचकार हुई मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा खेत्र में आत्म निर्भरता सिर्फ रक्षा बलों खोज ते विकास संस्थावां अते उद्योगों विचकार निर्विघन सहयोग राही ही हासिल की जा सकती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ते दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के निर्विघन वहां नूं यकीनी बनाने लई किशाऊ बहुमंत्री प्रोजैक्ट समझौते ते दस्तखत किए ने। देश में 15 साल अते इस तों वध उम्र के लोगों की समुची कार्यबल हिस्सेदारी दर अगस्त में वध के 52.8% हो गई है। भारत अते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेडिया जा रहा है। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਫਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: ओमान तट ते व्यापारक जहाज MTL गईया ते होए हमले संबंधी एक सवाल दे जवाब विच श्री जायसवाल ने कहा कि खेत्र विच व्यापारक जहाजा चालक दल दे मैंबरां नागरिकां अते नागरिक बुनियादी ढांचे ते हमले भारत लई अपरवान योग ने। उन्हां कहा कि भारत इस खेत्र विच आजाद अते सुरक्षित समुद्री आवाजाई दे हक विच है। उन्हां कहा कि ओमान दे तट ते हमले दा शिकार होए पनामा दे झंडे वाले जहाज विच ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: भारत में आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने विश्व पद्धर से भारत की वधदी भूमिका की शलाघा की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान एक न्यूज एजेंसी नाल गलबात करदे श्री ग्रीन ने क्वाड समूह दी वध रही गतिविधियां ते चानना पाया। हाई कमिश्नर ने कहा कि आस्ट्रेलिया इस समूह का मैंबर नहीं है पर वह भारत के ब्रिक्स के होर मैंबरों वालों निभाई जाने वाली भूमिका का सतिकार करता है। श्री ग्रीन ने भारत की कूटनीतिक लीडरशिप खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की शलाघा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा खेत्र में आत्म निर्भरता सिर्फ रक्षा बलों खोज ते विकास संस्थावां

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएसडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 8 बज रहे ने ते हुण वेला हो गया है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगदा। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

लो जी, प्रोग्राम जिंदगी सीने लेके असी फिर तो हाजिर हो गए हैं। चलो जी, हम थोड़ा हासा मजाक कर लेने, गंभीरता वाली गल्लां बहुत सारियां होंगे। अजकल जेडे लोग ने ना, इन्ने व्यस्त हो गए ने, इन्ने बिजी हो गए ने कि फोन की बैटरी जो 10% हो जाए ना, तो उसे वेले चार्जर लभदे ने। पर अपनी बैटरी 10% रह जाए तो कहते हैं चल कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो एक होर गल, असी फोन नू हर रात चार्ज करते हैं, पर अपने मन नू कदों चार्ज किया सी? कदे अपने आप नाल बैठे हो? दसो जनाब, सुन रहे हो सारे? कोई मीटिंग नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस तुसी ते थोड़ी जिंदगी। दोस्तों, जे असी रिश्तियां दी गल करिए ना, जिंदगी विच पैसा जरूरी है, कामयाबी बहुत जरूरी है, पर सब तो वड्डी दौलत हुंदी है अपने लो, अपना आप। कई बार असी अपने सब तो नेड़े दे लोकां दी कीमत नहीं जान पाते, उन्हां लई समां नहीं कढ़दे। जे मां नूं कहंदे आ ना कि बाद दी गल करदा है कि मैं मम्मी तुसी टेंशन लो, सारी जिंदगी तुसी मैनू इन्ना प्यार दिता, पूरी जिंदगी पालिया, मैं थोड़े नाल ही रहा। पर लोग पता ही नहीं, न्याणे अजकल दे मां नूं समां दिंदे ही नहीं। चलो अपने आप ने ही सवाल है, पूछ लो कि तुसी मां नूं अपनी समां दिंदे हो, अपने बाप नूं, अपने घरदियां नूं समां दिंदे हो? बिजी फोन चला लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी अपने कम्मां च बिजी। सो अगर तुसी अपनी जिंदगी नूं हसीन बनाना है, तो सब तो पहला काम तो यह है कि तुसी अपने आप नूं समां देना शुरू करो। जो तुसी अपने आप नूं समां देना शुरू करोगे, तुसी अपने आप नूं चार्ज करोगे। जे तुसी चार्ज होवोगे, तुहाडी काम करन दी शक्ति, तुहाडी लोकां नाल मुस्कुराउण दा जिहड़ी आदत पैदा होएगी, ते जदों तुसी लोकां नाल विचरना शुरू करोगे, मुस्कुरा के बुलाओगे, देखना तुहानूं लोक वी इदां ही बुलाउणगे, ते तुहानूं लोक इदां बुलाउणगे, तुहानूं चंगा लगेगा और तुहाडी जिंदगी हसीन होगी। दोस्तों, हुण वेला आ गया प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे अगले गीत दा, आनंद माणो जी इस गीत दा।

दोस्तों जिंदगी हसीना प्रोग्राम चल रहा और इस प्रोग्राम के अज एक छोटा जहा वादा अपने नाम वादा करते हैं कि मैं हर गल दिल से नहीं लाऊंगा। सब तो पहला वादा तुसी अपने आप नाल करना है, क्योंकि मैं ये वादा अपने आप नाल कर रहा थोड़े सारे सारे स्रोतों के नाल। तुहाडा दोस्त अपने आप नाल वादा कर रहा, और तुसी भी आपको अपनी जगह जिथे जिथे भी मेरी आवाज़ जा रही है थोड़े तक मैं पहुँच रहा वहाँ, तुसी अपने आप नाल वादा करना है कि मैं कोई भी गल दिल से नहीं लावांगा, मैं हर किसी नूं खुश करने की कोशिश नहीं करांगा, मैं अपने सुपनों नूं छड्डांगा नहीं, मैं अपने परिवार लई समां कढांगा, मैं अपने शरीर का ध्यान रखांगा, और सब तो वड्डा वादा मैं अपने मन नूं भी आराम देवांगा, तो मैं जिंदगी नूं सिर्फ कट्टांगा नहीं, मैं इसनूं जीवांगा। चलो एक बार फिर तो असी वादियां वल नूं जाइए। सब तो

0: ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के

0: राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
1: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
2: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ. सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
5: We need to develop sports infrastructure.
6: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
5: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
7: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE

0: क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुए इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का

0: गुकेश ते सिंदारोव दे विच वर्ल्ड चैंपियनशिप दा ए फाइनल मुकाबला खेडिया जाएगा। ए फाइनल इतिहास विच सब तों घट उम्र दे खिडारियों दे दरमियान होएगा। भारतीय जूनियर हॉकी दा प्रदर्शन भी शानदार रहा। मोकी चीन विच खेडे गए जूनियर एशिया कप विच मर्दां ते औरतां दी टीम ने एशिया कप अपने नाम कीता। मर्दां दे जूनियर एशिया कप की गल करिए ते फाइनल विच दक्षिणी कोरिया नूं 4-1 नाल हरा के भारत ने यह शानदार खिताब अपने नाम कीता। 13 सितंबर 2026 नूं खेडे गए सोन तमगे दे इस मुकाबले विच भारत ने दक्षिण कोरिया नूं शानदार हॉकी का प्रदर्शन करदिआं 4-1 दे नाल हराया। भारत वल्लों अजीत यादव, कप्तान अनमोल एका, प्रभदीप सिंह ते आशु मौर्या ने गोल ताके। इस जित नाल भारत ने लगातार चौथी वार ते कुल मिला के 6वीं वार जूनियर एशिया कप दा खिताब अपने नाम कीता है। इस महान जित दे नाल ही भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आने वाले मैनज जूनियर विश्व कप लई भी क्वालीफाई कर लिया। जूनियर एशिया कप विच जे महिला हॉकी टीम की गल करिए तां भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने साल 2023-2024 दीआं जित्तां तों बाद हुण साल 2026 विच इह ट्रॉफी जित के खिताबां दी शानदार हैट्रिक कीती है। 13 सितंबर नूं ही भारतीय महिला हॉकी टीम दा फाइनल मुकाबला मेजबान चीन दे नाल सी। मैच दे 17वें मिंट विच भारत दी सानिका चंद्रकांत माने ने एक शानदार गोल करके भारत नूं वाधा दवाया। भारतीय डिफेंस ने इस वाधे नूं अखीर तक बरकरार रखिया ते 1-0 नाल इह मुकाबला जित के खिताब अपने नाम कीता। क्वार्टर फाइनल मुकाबले विच भारतीय महिला हॉकी टीम ने पाकिस्तान नूं 19-0 दे वड्डे फर्क नाल हरा के इतिहासिक जित रची सी। सेमीफाइनल विच ड्रैग फ्लिकर सुप्रिया दे शानदार प्रदर्शन ने भारत नूं दक्षिण कोरिया दे खिलाफ 5-1 नाल जित दवाई सी। भारत दी सानिका माने 7 गोल करके टूरनामेंट विच सांझे तौर ते सब तों वध गोल करन वाली खिडारन बनी। इस दे नाल ही अज दा खेड संसार प्रोग्राम
1: हुण तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम खेड संसार।
0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, GRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 10 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे मुख खबरां।

विदेश मंत्रालय ने किया है कि नवी दिल्ली विच 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचकार हुई मीटिंग विच कई मुद्दों ते चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

ने कहा है कि रक्षा मंत्री ते रक्षा खेतर विच आत्म निर्भरता सिर्फ रक्षा बला खोज ते विकास संस्थावां अते उद्योगां विचकार निर्विघन सहयोग राही ही हासिल कीती जा सकती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अते दिल्ली दे मुख मंत्रियां ने यमुना नदी दे निर्विघन व्याह नूं यकीनी बनाउण लई किसाऊ बहु मंत्री प्रोजेक्ट समझौते ते दस्तखत कीते ने। देश विच 15 साल अते इस तों वध उमर दे लोकां दी समूची कार्यकारी हिस्सेदारी दर अगस्त विच वध के 52.8% हो गई है। पंजाब सरकार ने सेहत अते परिवार भलाई विभाग नूं राष्ट्रीय सेहत मिशन दे कर्मचारियों नूं दरपेश मसलियां दे हल लई इक सांझी कमेटी दे गठन दे निर्देश दिते ने। सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला सफल किडनी ट्रांसप्लांट करन वाला पंजाब दा पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। पंजाब पुलिस दी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कनेडा तो वापस भेजे जाण तो बाद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई दे एक करीबी साथी नूं हिरासत विच लिया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी दे एक वड्डे नेटवर्क्स दा पर्दाफाश करदिआं 8 मुलजमां नूं वड्डी मात्रा विच हीरोइन अफीम अते एक 30 बोर दे पिस्तौल समेत गिरफ्तार कीता। भारतीय रेलवे ने आगामी त्यौहार दे मद्देनज़र पंजाब दे मुसाफरां दी सहूलत लई 2 विशेष रेलगड्डियां शुरू कीतियां ने अते भारत अते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली दे अरुण जेटली स्टेडियम विच खेडिया जा रहा है। हुणे तुसीं सुन रहे सी अज दीआं मुख खबरां। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ 10:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਿਹਾਰ।

उ'नें तुसें सुन रहे सी प्रोग्राम सुरसजना च शास्त्रीय गायन जिसके कलाकार सन उस्ताद राशिद खान राग मारू बेहाक ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लाउन पेश है प्रोग्राम सरगम।

सो प्रोग्राम सरगम सरगम के आप सब का स्वागत है। इस वेले वेला हो गया रात का, वो वेला जो साढ़े को बहुत अपने इस वेले उन्होंने लोगों के नाल असी हाँ या आप अपने नाल बैठे सारे दिन की दौड़ भज तो दूर मेरी आवाज थोड़े तक पहुँच रही है और ये हल्का हल्का मैं म्यूजिक जड़ा थोड़े तक पहुँच रहा सुकून भरी आवाज सुकून भरे संगीत। दोस्तों सरगम सिर्फ सुरां का नाम है, सरगम तो वो एहसास है जो दिल में छू जाता है, कदे किसी पुरानी याद में जगा

वाह जी वाह, कितना सोहना गीत। दोस्तों कई गीत अजे होंगे ने जो सिर्फ कन्ना तक नहीं सिद्ध दिल तक पहुंच जाते हैं, तो संगीत की खूबसूरती भी है। ऐसे गीत सुनते हैं पर असल विच उन्हें लिखने विच अपनी कोई ना कोई कहानी लभ लैंदे आ। कदे कोई गीत सानू स्कूल कॉलेज दे दिनां तक लै जांदा ते कदे दोस्तां दी यादां विच ते कदे किसे खास इंसान दी याद दवा दिंदा। चलो जी हुण वारी है अगले गीत दी, एक नवे गीत दी जिहड़ा थानू जरूर किसे ना किसे दी याद होए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे

0: नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that

0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: थैंक यू।
0: ते अपने बारे दस दो जनाब, कौन ते कित्थो जी?
1: मैं जी सुखी कुमार उर्फ तोती, तहसील जिला गुरदासपुर ब्लॉक।
0: गीत केड़ा जनाब?
1: मेले नूं चल मेरे नाल कुड़े आशा सिंह मस्ताना जी।
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी। कुछ सुनेहे जी, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, जिस विच जी मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। गीत

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: जी। मैं मनजीत सोनी जी, फायर का।
0: होर सुनाओ जी, की हाल चाल है फाजिलका दे?
1: वधिया जी, तुसीं सुनाओ।
0: ते गीत दी फरमाइश दस दियो जी।
1: गीत सर ला दो, निमरत खेरा

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: सत श्री अकाल शम्मी साहब।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: प्रीतम, पिंड लद्दूवाला, जिला फिरोजपुर।
0: लसन वाले जी?
1: हाँ, लसन वाले। बिल्कुल जी, सही पहचाने।
0: सुनने वाले दोस्तों नू आवाज़ तो ज़्यादा लसन पता लग जाए कि भी प्रीतम सिंह जी लसन स्पेशलिस्ट है जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही। वैसे तो जानते ही ने सारे लोग, पर तुसी सानू पूरा मशहूर कर दिता है।
0: ते केहो जिहा
1: सही
0: बीतिया
1: गल।
0: जी अज दा दिन जी?
1: बस बहुत वधिया है, वधिया दिन चलता। हुण तो रुत बड़ी ठंडी मिठी जी चलती पई, गर्मी हट गई, अग्गे नालों बड़ा फर्क पै
0: बसंती
1: गया।
0: मौसम हो गया, पखा भी चलेगा ते ठंडक महसूस हुंदी है, साड़
1: बिल्कुल,
0: नहीं
1: रात
0: पैंदा।
1: पिछली को रात 1:30 बजे पखे बंद करने पैंदे ने।
0: क्या बात है, इंदा मतलब जिथे तुसी घर बनाया वे इलाका खुला डुला है,
1: हाँ बिल्कुल, अपना घर बाहर है, पिंड तो पासे कल्ला घर है।
0: क्योंकि तदी रात नूं ठंड लगती है। नहीं तो शहरां दे विच होवे या पिंड दे विच होवे ते हवा
1: हाँ
0: तां पहुंचेगी नहीं अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही गल है तुहाडी। तुसीं तो पछाण लिया भी घर मेरा वाकई बाहर है, जिवें तुसीं गल करिए।
0: ते फरमाइश दस दिओ जी, गीत केड़ा सुनाइए जी?
1: लाल चंदियां वाला जट दा,
0: केड़ा जी?
1: जिन्ना कीती ना कमाई उन्हें रज के की खाना।
0: बिल्कुल जी, दब के वाह ते रज के खा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही गल है, पुराने गल्लां सुनाउंदे। हाँ
0: सही है जी, ते
1: जी,
0: गीत जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: ओके ओके जी।
0: कुछ दोस्तों के सुनेहे भी शामिल करते हैं जी, उन्होंने भी इसे उम्मीद च सुनेहे भेजे कि साडा नाम भी शामिल होएगा जी। अगला सुनेहा जी सुशील कुमार चिलाना, पप्पी परीशा चिलाना, ये है जी पिंड ते डाकखाना रोड़ा वाली हनुमानगढ़ तो जी। अगला सुनेहा जी वड़िंग खेड़ा तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा, पिंड ते डाकखाना लोहगढ़ ठाकुरां वाला जिला फिरोजपुर तो स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह, डॉक्टर राम कुमार नारंग, बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखियां तो, कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा ते सीटी दीवाना, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रीतिशा संधू ते मैक्स, ये सारे दोस्त है जी कूलम रोड हरगोबिंद नगर नवांशहर तो, ते इन्हां दे नाल है सुरिंदर संधू, पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया ते गुड्डू। गीत लालचंद यमला जट दी आवाज़।

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन थे, कितों जी,
1: मनजीत कौर बोल रही हूँ, दिल्ली तो जी। बस
0: ते किहो जिहा बीतिया जी अज दा दिन?
1: गर्मी तो है ही है।
0: मतलब ये भी पंजाब च मौसम ठंडा मिठा हो गया, दिल्ली च हाली पूरी गर्मी पै रही है।
1: मैं भी एसी चलाया, बहुत गर्मी लगती है मन पे।
0: ते गीत दस दौ जी, सारे दोस्त जो तुहाडी फरमाइश का सुनेंगे
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: गर्मी वाल ध्यान नहीं जाएगा।
1: ठीक है। रंजीत बाबा का गीत सुना दो।
0: रंजीत बाबा की आवाज च सुनाने हैं तुहानू गीत, डॉलर वर्सिस रोटी जी।
1: ठीक है जी,
0: फोन
1: थैंक
0: करने लिए शुक्रिया जी।
1: यू, धन्यवाद।
0: एक सुनेहा भी आया जी, इकबाल सिंह, रजिंदर कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर, पिंड हठूर, जिला लुधियाना तो।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: थैंक यू भाजी, दोस्तों की को
0: ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते किथो जी?
1: ये श्री भाजी बिट्टू बोल रहा जी, दर्शन बैठता है मंगू बस्ती में।
0: मंगू बस्ती तो?
1: हाँ जी, हाँ जी, दूर दर्शन बैठता
0: है। मंगू बस्ती किथे करके बंदी जी?
1: दूरदर्शन की बैक साइड जी। बिल्कुल,
0: दूरदर्शन की बैक साइड।
1: बिल्कुल,
0: दूरदर्शन की बैक साइड अवतार नगर, टैगोर नगर,
1: 13 नंबर गली।
0: अवतार नगर पैंदा यानी कि?
1: अवतार नगर 13 नंबर गली पैंदी
0: जी। मतलब अवतार नगर 13 नंबर गली नु ही मंगू बस्ती कहा जांदा है?
1: हां जी, हां जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: ठीक है, यानी पहले मंगू बस्ती सी, हुन अवतार नगर दी गली नंबर 13 बन। हां जी,
1: पहले बाद च पई है, पहले मंगू बस्ती होंदी
0: सी। ठीक है जी, ते ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
1: ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।

0: मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई बलविंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच मानस जन्म दा प्रयोजन भाव मकसद निर्धारित कीता होया है, वो है अपना मूल पछानना, भाव उस प्रभु दी जोत विच अपेद होना, उस प्रभु दा दीदार करना। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सानू सुचजी जीवन जुगत भी दर्शाउंदी है। विशेष तौर ते संतां दा संग उत्तम संगत दस्या गया है। ए प्रभु नाल मिलाप करवाउण दा नेक कारज संत भाव गुरु दे हिस्से ही आउंदा है। एक वचन रूप विच जिथे संत पद आया है उत्थे संत तो भाव गुरु है। कबीर सेवा को दुए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। पंचम पातशाह गौड़ी सुखमणी रचना दी 23वीं अष्टपदी दे पहले पदे विच फरमाउंदे ने, संत संग अंतर प्रबडीठा। सुनदिया जोगिंदर सिंह कंग होरा पासों ये वार्ता।
1: ये पावन तो शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोइस अते राग दे तनी, तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी दे मुखार बिंतों उन्हां दी शाहकार रचना सुखमणी साहब दी 23वीं अष्टपदी दे आरंभ विच उचारण कीती होई है, जो राग गौड़ी विच तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 293 ते सुशोभित है। पावन गुरबाणी विच संत संग अथवा संतां दी संगत दा भरपूर वर्णन उपलब्ध हुंदा है। संत संग सदा ही गुणकारी अते पर उपकारी है, जिस द्वारा मनुखी मन प्रभु दे रंग विच रंगिया जांदा है अते भटकदे मन नूं संतोख ते सहज मिलदा है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी राग राम कली विच अंकित करदे हन, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। संत संग विच मन आनंद विभोर हो जाता है अते विसमादी रंगण विच रंगिया जाता है। पंचम दातार राग सोठ विच बख्शिश करते हैं, महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर सो मन मानिया, रंग रते विसमादी। संत संग हरी नाम दी औख दे के सब रोग कट देंदा है अते चंचल मन निर्मल हो जाता है, फिर यही निर्मल मन प्रभु प्राप्ति दा राज सेरा बन जाता है। पंजवें पातशाह जी दा राग बिलावल विच फरमान है, महिमा साधु संग की सुर हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए चीता। संत संग करदियां मन ना डोलदा है ना ही तृष्णा विच जोड़दा है, सब बंधन छुट जाते हैं, मोह परम मिट जाते हैं, फिर पार ब्रह्म नाल ही नेड़ता बन जाती है। राग भैरों विच पंजवें सतगुरु जी अभिव्यक्त करते हैं, संत मंडल में हार मन वसै, संत मंडल में दुरत सब नसै, संत मंडल में है निर्मल रीत, संत संग होय एक प्रीत, संत मंडल तहा का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। संत संग अजे ही अध्यात्मक पाठशाला है, जिथे विचर नाल जिग्यासु की आत्मक अवस्था उच्ची हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश होता है अते नाम तां दी बहुमुली पूंजी प्राप्त होती है, जिस नाल लोक ते परलोक दोवे सोहेले हो जाते हैं। वह संत जानवी धनता दे योग हन, जो मनुख नूं संत संग नाल जोड़ के उसका उधार करते हैं। अजिहे पर उपकारी संत जन वड्डियां भागां नाल ही मिलते हैं। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी राग कानड़ा विच फरमाउंदे हन, मेरा मन साध जना मिल हरिया, हो बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया। अजिहे तत्वेता संत जन जिथे परमेश्वर का नाम जप के प्रभु नाल अभेद हो जाते हैं, उत्थे मनुखता से डाढ़े पार उपकार करते हुए अणगिनत जिग्यासुआ नूं भी प्रभु के नाम नाल जोड़ के भाव सागर तो पार कर देंदे हैं। अजिहे संत जना के बचन भी अटल होंदे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी का राग सारंग भी फरमान है,

करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। इस पावन रचना का गायन किया भाई जगतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिरस वाले जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
1: योग शब्द ज्ञान शब्द बे शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सुदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ते आत्मा आत्मा बस देवस जे को जाने पे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान कबद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए।

काय अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पाओ, सिखिया संत नाम भज नानक, राम रंग

रंच करेत खेत तंदरमत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट पिपत हरी मात पिता भाई अर बंदप बोचन के सब सूझ परे भरत मान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे कुनहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर कह लियो कृपाल कृपा नित नानक काट परम परे रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामगना संपदोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ताशो मोह बड़ो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतद आद करत अगना मृत मंजार बसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र करतर साजन साख उल्टत जात बिरंगी शार दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपार श्रीपत नाथ शरण नानक जन

ब्रह्मादि शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोज ते गोरख।

प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर

बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है, दह दिस ताए महाबिखिया को, पर धन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रो

पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी।

0: सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात विदे मन।